0: ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है, और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ।
0: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले तो बहुत अच्छा था, और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में हम अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा, तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: चबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो वो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मुझे आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सलें करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जज थ्रो आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, आल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ

दिल्ली जाते थे और ये सब। तो उन्होंने कहा यार मैं तो तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा। पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है। तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शबाना की और वो, तो आप किसी और बोलिए, तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल। और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके

0: फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शूट करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
1: सबसे पुराना है।
0: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है। तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी जो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था। और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल। अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक ही है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी। वो बन गया, जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी। उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने की, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चुअल स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हेना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बस। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

कहानियों का। और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो मित्र शारदा। स्वीकारे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है। हर युवा के मन में कोई सपना ज़रूर होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अधिकारी, कोई कलाकार, तो कोई अपने परिवार का सहारा। लेकिन कई बार रास्ते कठिन होते हैं, असफलता मिलती है, लोग हतोत्साहित करते हैं और आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में ज़रूरत होती है खुद पर विश्वास रखने की। कार्यक्रम में हम बातें इसी आत्मविश्वास के बारे में और कुछ मौसम के बारे में और भी कुछ कुछ बातें करते ही रहेंगे। बहरहाल कार्यक्रम का हिस्सा होता है गीत संगीत भी, तो चलिए क्यों ना सुन लिया जाए एक प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी बालाघाट के लोकप्रिय कार्यक्रमों से एक कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का स्वागत है। यह मंच है युवाओं के सपनों, संघर्षों और सफलता की कहानी।

0: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है CKYC ID।
0: CKYC मतलब
1: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-digit CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं एक और जरूरी संदेश। सतपुड़ा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक एवं ITI कॉलेज कर्रा बालाघाट में 26 मई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः 9 बजे आयोजित होने वाले कैंपस ड्राइव में 11 से अधिक प्रसिद्ध कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का ₹16,000 से ₹30,000 वेतनमान पर चयन करेगी, जिसमें 18 से 35 वर्ष के बीच BE, BTEC, पॉलिटेक्निक, ITI, BA, BSc, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा कर हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 6262604133 पर। हमारा पता है सतपुड़ा इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज, लालबर्रा रोड, मांझापुर, गर्रा, बालाघाट। सूचना समाप्त हुई।

0: दी, ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यह साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सपनों की, मेहनत की, संघर्ष और सफलता की, है ना। जीवन में सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह हमें भी असफलता से डरना नहीं चाहिए। याद रखिए, असफलता अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत होती है। अगर परीक्षा में नंबर कम आए हैं, अगर नौकरी नहीं मिली, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। हो सकता है ज़िंदगी आपको और मजबूत बना रही हो, है कि नहीं। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल आपका प्रयास ज़रूर रंग लाएगा, इसीलिए चलते रहें।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियाँ और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। श्रोताओं, एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। घर के हालात उसके कुछ अच्छे नहीं थे। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। लोग कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की और एक दिन सरकारी अधिकारी बन गया। और जब उससे सफलता का राज पूछा गया तो जानते हैं उसने क्या कहा? मैंने परिस्थितियों को नहीं, अपने सपनों को बड़ा माना। दोस्तों, यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। इसी सोच को लेकर आगे बढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी।

तो श्रोताओं, चलते चलते हमें सिर्फ आपसे यही कहना है, मुश्किलों से डरना कैसा, आंधी में भी चलना सीखो, गिरकर फिर से उठना सीखो, अपने दम पर बढ़ना सीखो। राह कठिन हो तो क्या कम है, मंजिल खुद पास चली जाए, जिसमें हौसले बुलंद हो, किस्मत से भी सिर झुकाएं। है ना, इन्हीं विचारों के साथ अब हम आपसे विदा चाहेंगे। आपसे यही कहेंगे कि आज का युवा प्रतिभाशाली है, ज़रूरत है केवल सही दिशा और आत्मविश्वास की। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, दुनिया उसी इंसान को पहचानती है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपनी संगति अच्छी अपनाइए और सबसे ज़रूरी, अपने सपनों पर विश्वास रखिए। इसी के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का पहला गीत आपने सुना फिल्म क्रिश से, आवाजें थी उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। आइए अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं शान और सुनीता राव के युगल स्वर में, फिल्म का नाम अशोका।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम का गाया फिल्म दीदार का ये गीत।

0: श्रोताओं, आर्यन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम एंड पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।

कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र शारदा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में आज हम बातें करेंगे कुछ मौसम की, कुछ अपने आसपास की, कुछ स्वास्थ्य की। मिली जुली बातों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट की। श्रोताओं, आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है।

तो हर उम्र के व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से नियमित व्यायाम, योग और संतुलित भोजन ज़रूर अपनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, पर्याप्त नींद लेना और सकारात्मक सोच रखना जीवन को बेहतर बनाता है। तनाव से दूर रहने के लिए संगीत, खेल और अच्छे दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी है और मन मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे गीतों का सुना जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुनिए, आ रहा है फिर एक बार ओपन मेगा कैंपस ड्राइव। सतपुड़ा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई कॉलेज कर्रा बालाघाट में 26 मई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः 9 बजे आयोजित होने वाले कैंपस ड्राइव में 11 से अधिक प्रसिद्ध कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का ₹16,000 से ₹30,000 वेतनमान पर चयन करेगी, जिसमें 18 से 35 वर्ष के बीच बीई, बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीए, बीएससी, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाकर हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर है 6262604133 पर। हमारा पता है सतपुड़ा इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज, लालबर्रा रोड, माझापुर, गर्रा, बालाघाट। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं आज के युवाओं की यदि हम बात करें तो आज का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, संगीत हो या डिजिटल दुनिया, हर जगह युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत। कभी कभी असफलता मिलती है लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है, इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है ना? तो कोशिश करना जारी रखें और फिलहाल सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: शुदा, एक वो दौर था जब नौकरियों को, सर्विसेज को पढ़े लिखे लोगों की तलाश थी, लेकिन आज ये दौर है कि शिक्षा और शिक्षा का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि इस बारे में हम क्या ही कहें, आप बेहतर जानते हैं। आज के युवा डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, कंटेंट क्रिएशन, रेडियो जॉकी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी शानदार अवसर हैं उनके लिए, वो अपना करियर बना सकते हैं। ज़रूरी है अपनी रुचि को पहचानना और उसी दिशा में मेहनत करने की, समय का सही उपयोग और नई चीज़ें सीखने की लगन युवाओं को जो रोज़गार की तलाश में है आगे लेकर जा सकती है। बहरहाल, कार्यक्रम में बारी एक गीत की।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 2 5 8 3 6 8 2 4।
2: श्रोताओं, अब बात कर लें चलते चलते आज की तारीख के बारे में। 24 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बताना चाहते हैं। 24 मई का इतिहास भारत और विश्व में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्मों और खोजों के लिए माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 1896 में क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म और 1543 में खगोलविद निकोलस कोपरनिकस का निधन इस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं। और भी घटनाएं इस तारीख में घटित हुई थी, जैसे दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना वापस लौटी थी, इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया था, अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन की स्थापना इसी तारीख को हुई थी, अलीगढ़ में मोहम्मद दीन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए इसी तारीख से खोल दिया गया, थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार इसी तारीख को किया, अमेरिका में पहली वातानुकूलित यात्री ट्रेन भी 24 मई से शुरू हुई और साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस इसी तारीख को किया गया था। श्रोताओं, ये थी आज की तारीख से जुड़ी कुछ खास बातें और चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: श्रोताओं, आज का कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट यहीं संपन्न होता है। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र ही है और वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। तो आइए शुरुआत करें इस कार्यक्रम की।

कार्यक्रम सुगम संगीत के लिए ये आवाज़ें थी भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं गीत और गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

मिताली सिंह की गई इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

रात्रि 8 बजे फिर एक बार हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 8:15 पर समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की रिले किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पॉप म्यूजिक।

आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम स्पॉटलाइट। समाचारों का वक्त होगा रात 9:15, 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

श्रोता, रात्रि 10:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की।

0: expatriation in line with the Ministry of Home Affairs MHA guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. This decision has been taken in view of the developments and concerns raised by the students and parents regarding the CBSE Post-Result Services portal. A four-member medical team from the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi, today conducted second autopsy of the former model-turned-actor Tushar Sharma in Bhopal. The post-mortem lasted nearly 3 hours under tight security arrangements. After completion of legal formalities, the body was handed over to the family and the last rites were performed at the Bhadbada Crematorium in Bhopal. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, clinching 2 silver and 1 bronze medal in the women's freestyle events in Vietnam's Da Nang today. In the 50-kilogram category, Sweetie won silver after going down against local favourite Ngo Linh Do, 7-5 defeat in the gold medal match. And in IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 206 runs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium. In reply, Mumbai Indians were 137 for 5 in 13.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: Tino college mein.
2: Don't worry.
1: Fees to dekho.
3: Hey, kya hal hai? Kya hua?
2: Fees ki tension.
3: Rahul ka bank account to hai hi.
4: Rasta clear. बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल.
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई.
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई. आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
8: प्लेटफॉर्म
9: नंबर 2
10: से चलने वाली
9: सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना.
11: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक.
8: देखा
9: पापा, रुको मैं पे करता हूँ. नो सिग्नल.
11: अब क्या करोगे?
9: फ्री वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा.
11: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई.
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय.
11: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
12: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे. सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल. भोपाल की तुषा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम. और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी. इनका प्रसारण

0: आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन, प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बायपास, रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन, RGPM सनखेड़ी, दानिशकुंज, कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले चार दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधुलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजातीय ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: दादी कौन सा प्लांट है
7: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
8: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
6: दादू रुको लिंक में क्लिक मत करना
8: क्यों
6: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
8: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
10: FM पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है श्रोताओं आप सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आक्रोश इस फिल्म से

अनुपम आमोद के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म आक्रोश का गीत। कार्यक्रम का अगला गाना हद कर दिया आपने इस फिल्म से, आवाज़ें उदित नारायण और विभा शर्मा की।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो ग्राम सभा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कार्यक्रम में सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा चौरे। भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय खेतों में सही प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। पानी की बचत, फसलों की सुरक्षा, पशुपालन, सब्जियों की खेती, कीट एवं रोग नियंत्रण और आगामी खरीफ फसलों की तैयारी, ये सभी विषय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए हमारे आज के हेलोग्राम सभा का विषय हमने रखा है ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। और आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर के नेमा जी, जो कि प्रमुख वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है। आपको बता दें, डॉक्टर साहब फसल और खेती के बहुत जानकार हैं और इस क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार किसान भाइयों और राधा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है, जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्यों से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। डॉक्टर के नेमा जी हमारे साथ हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई हमारा टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो नए किसान श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दें कि भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर है 2669902 और 2660903। इन नंबरों पर आप हमें फोन करें और आज के विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करें। और हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे आज के पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
3: जी नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं, स्थान भी बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप?
3: मैं जगत सिंह चार, ग्राम पिपलिया वराई, तहसील बेगौन, जिला रायसेन से बोल रहा हूं मैडम जी।
1: रायसेन से बोल रहे हैं जगत जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो ग्राम सभा में। जी बताएं, क्या सवाल है आपका?
3: जी ये बोल रहा हूँ, जब अभी मक्का बोना, जैसे मक्का बोना है
1: जी,
3: तो कौन सा बीज है कि जो दो तीन महीना में आ जावे? अच्छो
2: मक्का आप बोना चाहते हैं, देखिए ये

0: इसमें आपने लिख लीजिए अर्ली जे एम 8 और जे एम 12 और एक किस्म है भीमा
1: जी,
0: एक है जवाहर हाइब्रिड 2
1: जी।
0: ये इसमें से कोई भी किस्म आप चुन सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखना पड़ेगी कि आप अगर अकेले बोने वाले हैं, आसपास कोई किसान नहीं है, तो थोड़ा सा चौकीदारी की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी, क्योंकि जानवरों से नुकसान इसमें ज्यादा होता है। और इसमें एक इल्ली जो है फाल वर्म कहलाता है, वो एक इल्ली का आक्रमण जो है इसमें देखा गया है, तो कृपया उसका ध्यान रखें कि उस इल्ली के नियंत्रण के लिए आप तैयार रहें।
1: जी सर।
0: जी
1: जी।
2: तो जगत जी को अपने सवाल जी जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप
1: जी? विपिन भाई साहब जी हैं, जहां भी हुए मुझे कॉल कर ले, मेरा नाम
2: चलिए लगता है कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में कनेक्शन हट गया अपना
0: जी।
2: जी सर, अभी क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही
0: जी,
2: है
0: जी।
2: तो और अब अगर फसलों की सिंचाई की बात करें या नॉर्मल हम पेड़ पौधों की सिंचाई की बात भी करें, तो किस समय करना चाहिए, कौन सा समय सबसे अच्छा होता है, लाभकारी होता है?
0: समय तो ऐसा है, ये जमीन आपकी कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो हमारे किसान भाई कृपया ये ध्यान रखें कि हल्की जमीन है कि मोटे की जमीन है। मोटे की जमीन से मतलब है कि काली अगर जमीन है तो उसके हिसाब से उनको अपनी जमीन का ध्यान रखना चाहिए। हल्की जमीन है तो उसमें 7 से 10 दिन के अंतराल पर उनको सिंचाई करना है, और अगर काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा अंतराल ज्यादा हो सकता है, लेकिन समय समय पर उनको खेत का भ्रमण जरूर करना पड़ेगा, तभी उनको मालूम चलेगा कि हमें सिंचाई की आवश्यकता कब है।
2: बिल्कुल, यानी कि जमीन पर निर्भर करता है, हल्की पर अलग और काली मिट्टी पर अलग जी। तो हमारे साथ सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, एक और कॉलर है उनसे मिलते हैं, जानते हैं जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: हेलो
0: हेलो
2: हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहां से बोल रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको, आप सुन पा रहे हैं हमें?
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं अपना।
3: संजू अहरवार, कुतरिया करकट, जिला सागर से बोल रहे हैं दीदी जी।
2: जी संजू भैया, राम राम।
3: राम राम दीदी जी, राधा दीदी जी, नमस्ते।
2: नमस्ते भैया, नमस्ते, क्या हाल चाल?
3: ठीक है, अब गर्मी पड़ रही, सब आगे की तैयारी की उड़दा की किशनगंज में कौन
2: जी। संजू जी थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी।
3: उड़दे की किस्म जानना चाहते हैं, उड़दा लगाना है,
2: उड़दा लगाना चाह रहे हैं, उड़द लगाना चाह रहे हैं,
0: उड़द लगाना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये तो बरसात बरसात के लिए है, उड़द आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो किस्म है उसका सही चुनाव आपको करना पड़ेगा। उसके लिए पीयू 31 करके एक किस्म है, प्रताप उड़द है, JU 2 है, JU 3 है, ये अपने यहाँ की वैरायटी है, JU 2 JU 3 तो, और इंदिरा उड़द 1 करके है, ठीक है। और एक किस्म और नोट कर लीजिए, TJU 130, ये हमारे क्षेत्रों के लिए ये उड़द की किस्में बहुत अच्छी हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे
2: संजू जी, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप?
4: हाँ, सोयाबीन की भी जानकारी, सोयाबीन भी लगाना है,
2: सोयाबीन भी लगाना चाह रहे हैं।
0: हाँ, आपकी जो मिट्टी मिट्टी की हालत है वो कैसी है?
4: मिट्टी की हालत ठीक है, ना ही पानी भरता है ना ही कुछ,
0: नहीं हल्की हल्की कम गहरी है, मध्यम दोमट है के गहरी काली है?
4: गहरी काली है सर,
0: गहरी काली है। तो उसके लिए PK 416, PUSA 16, PUSA 20 और JS 8021, ये JS 8021 जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका आप चयन कर सकते हैं, ठीक है।
4: महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी, जी। संजू भैया आपका भी ग्राम सभा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे कॉलर बहुत जागरूक हैं और अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी फसलों से जुड़ी जानकारी लगातार ले रहे हैं। और सर हम अभी बात कर रहे थे कि

0: सिंचाई की बात कर रहे थे। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हम खेत को लंबे समय तक नमी बनाए रखना चाहते हैं कि नमी बनी रहे, तो इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
1: लंबे समय के लिए अगर हमें नमी की आवश्यकता है खेत में बनाए रखना है
0: जी,
1: तो सबसे बढ़िया साधन तो ये है कि पलवार जो है पलवार करते हैं तो उससे छाया बनी रहती है, तो उससे क्या है कि वाष्पीकरण जो है हमारे खेत से नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जमीन की तैयारी करके पाटा लगा के रख दिया जाए
0: जी,
1: तो उससे भी जमीन से जो है जल जल्दी उड़ेगा नहीं
0: जी,
1: सूर्य की गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ती है
0: जी,
1: तो ये मतलब उपाय है। तीसरी बात ये है कि जैविक खाद का और वर्मी कंपोस्ट का हमारे किसान भाइयों को लगातार उपयोग अगर वो करते हैं तो जल धारण क्षमता जो है वो हमारी भूमि की बढ़ जाती है, और हर 3 साल में अगर गहरी जुताई का जो है प्रयास करते हैं हमारे किसान भाई तो उससे भी जल धारण क्षमता हमारी जमीन की ज्यादा हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो किसान भाइयों याद रखें आपकी आपको पलवार लगाना है, पाटा का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज सर ने कही कि जैविक खेती करना है और वर्मी कंपोस्ट का आपको इस्तेमाल करना है, और हर 3 साल में गहरी जुताई जरूर करना है अपने खेत की। बिल्कुल, और हमें संकेत मिल रहा है, एक और कॉलर हमारे साथ है जी। नमस्कार।
2: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: अशोक पटेल बात कर रहे हैं, श्याम नगर बेगमगंज में।
0: अशोक पटेल, कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी आप?
2: श्याम नगर बेगमगंज मैडम।
0: बेगमगंज से
2: जी मैडम।
0: जी जी, बताएं अशोक जी क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप सर से?
2: मैडम सर से ये पूछना चाह रहे हैं, अभी गर्मियों में जो बेल वर्गीय फसलें लगी हैं मैम, तो इनमें रस चूसक कीड़ों की बहुत समस्या आ रही, तो इसके लिए जैविक निदान में क्या रहेगा सबसे अच्छा
0: जी,
2: जो अपने जैसे विभाग पर वो चीज मिल जाए?
0: जी जी
2: जी
0: सर, अशोक जी पूछना चाह रहे हैं कि गर्मियों में ये जो कीट लग रहे हैं तो इनकी बहुत समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं?
1: गर्मियों में जो कीट लगते हैं तो उसमें कौन सा इल्ली लग रही है, क्या रस चूसक कीट?
0: अशोक जी थोड़ा सा आप आवाज बहुत आवाज बढ़ा के थोड़ा सा बोले, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी।
2: अब अच्छी आ रही मैम?
0: थोड़ा नेटवर्क में है आप?
2: जी मैम नेटवर्क में तो हैं हम
0: जी। हाँ बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं
1: आप? आपके यहाँ ये बताइए कि रस चूसक कीड़े हैं, सफेद मक्खी वगैरह है कि इल्ली वगैरह है, क्या है?
2: सर वो क्या है कि पत्ते ऑटोमेटिक कुकड़ जाते हैं ऊपर से,
1: पत्ते मतलब पत्ते सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो उसके लिए देखिए ऐसा है कि इमीडा क्लोप्रिड कल के एक रसायन आता है
2: जी सर,
1: क्योंकि चूंकि कीट आ चुका है तो उसके लिए अपन नीम तेल का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते हैं, अगर शुरुआती अवस्था होती तो उसमें नीम तेल का अपन छिड़काव कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको इमीडा क्लोपर नाम की जो इंसेक्टिसाइड है उसका जो है प्रयोग आप कर लीजिए तो उसमें आपका जो है फायदा हो जाएगा जी।
2: अच्छा
0: जी, तो अशोक जी आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी, और सर अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर सब्जियों पे अगर हम आते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो सकती है इस मौसम को देखते हुए?
1: इस मौसम में वैसे हमारे किसान भाइयों ने बेलदार सब्जियां जो है अपने खेतों में लगा रखी हैं, और कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं बरबटी जो है, भिंडी है, इसका भी हमारे किसान भाई जो है उस चूंकि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है तो ये अभी हमारे किसान भाइयों ने फसलें लगा
0: ली हैं जी
1: जी, और इसमें ही जैसे करेला वगैरह है, कद्दू है, लौकी है, गिलकी है, तोरई है, तो ये सब्जियां जो है हमारे किसान भाइयों ने अभी लगा रखी है।
0: तो ये जो सब्जियां लगा रखी हैं इनकी वो देखभाल कैसे करें कि ज्यादा इनको मुनाफा?
1: इसमें देखभाल उनको ये करना है, सबसे बड़ी समस्या जो है कीड़ों की आती है, जैसे अभी इनने बताया था कि सिकुड़ रही हैं
0: जी,
1: तो इसी तरह से कई किस्म के कीट जो होते हैं वो हमारी इन सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक फल मक्खी होती है तो फल मक्खी के कारण वो अपने अंडे जो देती है फलों में तो उससे टेढ़ी मेढ़े जो है फल हो जाते हैं और बाजार मूल्य जो है कम मिल पाता है हमारे किसान भाइयों को।

0: उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई इमिडाक्लोपर नाम का जो है वो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसके लिए जगह जगह अपन एक घोल बनाते हैं, गुड़ डालते हैं और थायमेथॉक्सम करके एक इंसेक्टिसाइड है वो डालते हैं, तो इसका घोल बना के और उसमें थोड़ा सा अपन डाल सकते हैं सिरका।
1: जी जी,
0: उसके कटोरे जगह जगह सब्जियों के खेत में अपन टांग देते हैं, तो ये जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है, ये उसमें आके डूब के मर जाती है, तो उससे उनका नियंत्रण हो जाता है।
1: जी जी जी, बिल्कुल सर। तो आपने जैसा कि बताया कि बेलदार सब्जियां भी लगी हुई हैं, उनका हमको निराकरण करने के लिए आपने जो दवाइयां बताई हैं उनका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी नमस्कार।
2: जी, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: राजेश नेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
2: जी, और मेरा सवाल ये है
1: जी
2: कि ग्रीष्मकालीन समय में अक्सर खेतों में आग वगैरह लग जाती है।
1: आग लग तो जाती है खेतों में जी,
2: खाली
1: जी पूरा करें क्या
2: पड़ता है क्या
1: जी, पूरा फिर से दोहराए अपना सवाल।
2: मेरा सवाल यह है कि ग्रीष्मकालीन समय में खेतों में, खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है।
1: खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है। हाँ,
2: तो क्या इसके उर्वरा शक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ता है, मिट्टी खराब होती है क्या उससे?
1: राजेश नेमा जी जानना चाह रहे हैं सर कि जो ये खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है तो क्या हमारे उर्वरा शक्ति पे तब भी असर पड़ता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आग लगती तो नहीं है, ये किसान जो है आग जानबूझ के लगा देते हैं कि ताकि नरवाई के कारण उनको कोई दिक्कत नहीं हो। आग नहीं लगाना चाहिए, और अगर आग लग जाती है तो उससे हमारी 10-15 वर्षों की मेहनत पे पानी फिर जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मिट्टी से अपन ईंट बनाते हैं, भट्टे में रख देते हैं, तो उस ईंट के चूरे में क्या कोई चीज उत्पन्न की जा सकती है? नहीं की जा सकती। जल धारण क्षमता भी अगर पानी डालेंगे तो पूरा निकल के उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है मिट्टी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जल उसमें रुकता नहीं है। वो तीसरी बात यह है कि जितने भी जैविक जो कीट रहते हैं उसमें जीवाणु रहते हैं, ये जीवाणु जो है मर जाते हैं, और इस तरह हमारे उत्पादन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 15-20 सालों की जो मेहनत है, आपने मिट्टी को बनाया है, देसी खाद दिया है, वर्मी कंपोस्ट दिया है और फर्टिलाइजर दिया है, तो वो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, उसका बड़ा विपरीत प्रभाव हमारे जो भूमि है उसके ऊपर पड़ता है।
1: जी जी, तो यानी कि किसान भाइयों को अपनी खुद की मेहनत पे पानी नहीं फेरना है, नरवाई नहीं चलाना है।
0: इसके लिए तो आजकल सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है, और किसानों को उसमें जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और सैटेलाइट के माध्यम से आपके खेत का फोटो सरकार के पास पहुंच जाता है, तो इस चक्कर में नहीं रहे हैं किसान के कोई देख नहीं रहा है। हाँ, पूरा देख रहे हैं, और किसानों को पिछले साल सजा भी हो चुकी है और जुर्माना भी हो चुका है।
1: बिल्कुल, और हम तो ये कहेंगे कि किसानों के जुर्माने ये सब तो बात की बात है, आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने खेत में
0: अपना नुकसान,
1: उर्वरा शक्ति खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर लाइन पर है।
0: हाँ
1: जी नमस्कार।
3: नमस्कार महोदय, मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से अभिलाष सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: सर नाम अपना दोहराए प्लीज।
3: हरिविलास सिंह तोमर
1: जी। हरिविलास जी, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
3: मेरा सवाल विशेषज्ञ महोदय से है कि चूक हरी खाद का प्रयोग भी जैविक विधि में ही आता है, तो मैं जानना चाहता हूँ हरी खाद के प्रयोग के लिए कौन कौन सी फसलें बो दी जाए।
1: हरी खाद के प्रयोग के लिए कौन कौन सी फसलें बोई जाए, ये पूछना चाह रहे हैं आप?
3: जी
1: जी,
0: हरी खाद के लिए वैसे तो जो मूंग उड़द है इसको भी आप बो सकते हैं, जैसे ही उसके फूल आने लगते हैं तो उसको अपन बखर चला के मिट्टी में मिला देते हैं, और नहीं तो ढेंचा और सनई जो है इसका भी अपन बोनी करके और उसको भी मिट्टी में मिला देते हैं।
3: समय और नेचा, इसकी समय कब है, कब बोने का बीज अगर तैयारी।

0: करें खेत की,
1: समय जानना चाह रहे हैं, सही समय कौन सा होगा बोने का, तैयारी करने का।
2: हाँ, उसके लिए आप अभी अभी चाहें तो अभी बोनिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास में पानी की मात्रा है सही तो आप अभी उसके कर लीजिए, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है 16 से 20 जून के बीच में पानी आने का समय रहता है।
0: जी
1: तो हरिविलास जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर के नेमा जी, अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्यों पे, कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमारे किसान भाइयों को शुरू कर देने चाहिए, आवश्यक तौर पर शुरू कर देने चाहिए।
2: जैसे ही अपनी फसल कटती है तो सबसे पहला तो अपन को उपाय ये करना है कि मिट्टी की जांच वो करवा लें, ताकि खरीफ में आपको खाद वगैरह जो है फर्टिलाइजर कितनी अपनी फसलों में देना है तो उससे ये तय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु में जो जुताई, गहरी जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, वो जरूर हर 3 साल में हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: सर बीच में आपको रोकना चाहेंगे, हम अपनी बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: हेलो
1: हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: अरे दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
3: हम भारत चंद्र साहू जी बोल रहे हैं, गोकुल ग्राम परसुन, तहसील मालथोन, जिला सागर।
1: भरत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम में, बताएं क्या सवाल है आपका।
3: दीदी हम ये पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में अभी उड़द की जैसे कमी बहुत देखने में आ रही है, तो ऐसी कौन सी वेरायटी है जो कि अपन हम किसान भाई लगा सकते हैं, अच्छी किस्म का बीज हो।
1: उड़द की सबसे अच्छी किस्म के बारे में आप जानना चाह रहे हैं।
3: हाँ, हाँ बिल्कुल, यही जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं।
2: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और आपका प्रश्न जो है ये, आप पेन कागज लेके बैठे हो तो इंदिरा उड़द एक,
3: अच्छा अच्छा
2: ठीक है, JU2 और JU3, JU2 और JU3, इंदिरा उड़द एक और TU31। हाँ, और TJU 130। एक प्रताप उड़द भी अच्छी किस्म है, तो ये हमारे प्रदेश के लिए ये अच्छी किस्में हैं, तो अपने प्रदेश के हिसाब से ही मैंने आपको ये किस्में बताई हैं, तो
3: बिल्कुल
2: इनमें से कोई भी आप उपलब्ध हो उसको लगाइए।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब
1: जी
2: जी,
1: तो भरत भैया को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब जैसे अभी अपन
2: बोल रहे हैं,
1: कुछ और पूछना चाह रहे हैं भरत भैया आप?
3: नहीं, भागचंद्र साहू जी।
1: अच्छा भागचंद्र साहू जी, जी माफ कीजिएगा, भागचंद्र बॉस माफ कीजिएगा जी। डॉक्टर साहब अभी हम क्योंकि बीज चयन की बात कर रहे हैं, तो इस समय किसानों को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो बीज का चयन कर रहे हैं?
2: इस समय सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो किस्म आप 8-10 साल से लगा रहे हैं उसको पहली दफा में, मतलब ये है कि उसको आप बदल दीजिए, उसके जगह जो अच्छी किस्म है उसका चयन करें। दूसरी चीज ये है कि एक ही फसल पे ना जाएं, एक ही फसल नहीं लेना है, 2-3 फसलें लेना है। अगर आपकी मजबूरी है कि एक ही फसल लेना है तो उस फसल की 2-3 किस्मों का चयन करें, जैसे सोयाबीन बोने वाले हैं तो उसकी 2-3 किस्में लीजिए, उड़द है तो उड़द की 2-3 किस्में लीजिए, ऐसा मूंग है उसकी 2-3 किस्में, अरहर है उसकी 2-3 किस्में लीजिए। मतलब एक किस्म के ऊपर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि अगर कोई विशेष समस्या आती, भारी समस्या आती है तो नुकसान ज्यादा हो जाता है।
1: जी, जी, जी।
2: तो ये हमारे किसान भाई जरूर ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। एक और कॉलर फोन लाइन पर है। जी नमस्कार।
4: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार भैया, नाम बताए।
4: गुड्डू चौबे बोल रहे, बमहरी ढूंढा, जिला सागर से।
1: गुड्डू जी, जी गुड्डू जी, क्या हाल चाल?
4: आप बढ़िया हैं दीदी?
1: हाँ भैया, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप सर से?
4: सोयाबीन चाहने हैं, कम दिनों में आ जाए जो ना अच्छी पैदावार, तो कौन सा सोयाबीन ले मैं?
1: गुड्डू भैया पूछना चाह रहे हैं सोयाबीन की कौन सी वो किस्म लें जो कम समय में जल्दी से तैयार हो जाए।
2: हाँ, शीघ्र पकने वाली आपको किस्म चाहिए है,

0: शीघ्र पकने वाली आपको किस्म हम बता दे रहे हैं कि ये 85 से 98 दिन की अवधि की आपको बता रहे हैं। JS 71-5
1: जी,
0: JS 335 ये तो पुरानी वैरायटी हो गई है, इसको मत लगाइए। JS 90-41 JS 93-05 और एक इंदौर की किस्म है NRC 7 और JS 95-60। ये किस्में जो है ये कम दिन की है, 85 से 98 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती हैं। और इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। इसमें दो तीन किस्में ऐसी भी हैं कि अगर पानी एक दो दिन रुका भी रहता है तो उससे अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा।
2: बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जहां आप टेलीफोन

0: माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। और हमारा जो आज का विषय है वो है ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमारे विशेषज्ञ के नेमा जी हमारे साथ हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हमारे किसान भाई हमारे टेलीफोन नंबर जानते ही है, लेकिन जो भी किसान श्रोता जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर है 2660902 और 2660903। और हमें संकेत मिल रहा है एक और फोन लाइन पर, एक कॉलर हमारे साथ है। जी नमस्कार।
1: जी मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
0: उमा शंकर जी पिपरिया से, जी बताएं क्या सवाल है आपका?
1: मैम मुझे तिली की किस्में जानना है सर से, जो जल्दी भी आ जाए और अच्छे से भी मिल जाए फसल हमें।
0: जी उमा शंकर जी, तिली की किस्में, तिल की किस्में जानना चाह रहे हैं जो जल्दी से आ जाए।
2: जी इनकी किस्में भैया पेन कागज है
1: जी,
2: हाँ लिखिए आप TKG 21।
1: मैं लिख रहा हूँ
2: TKG 22
1: जी,
2: JT 7 JT और कंचन 28 और कंचन 32। ये जो तीन चार किस्में मैंने बताई हैं, TKG 21 TKG 22 TKG 7 कंचन नंबर 28 और कंचन नंबर 32। इन किस्मों में से कोई भी आप तिल की किस्म प्राप्त करें और उसको लगाएंगे। और सागर, सागर अगर जा सकते हैं तो सागर कृषि विज्ञान केंद्र से भी आपको तिल की अच्छी किस्में मिल सकती है।
1: जी सर एक प्रश्न और था, वो हाँ जो भटा लगाए हैं सर उसमें सफेद सफेद कीड़े लग रहे हैं उसके लिए?
2: हाँ भटा लगाए हैं सफेद कीड़े लग रहे हैं तो उसमें अब चूंकि थोड़ी सी देर तो आपको हो गई है लेकिन फिर भी आप उसमें थायामिथाक्सम
1: जी जी
2: है ना, थायामिथाक्सम का स्प्रे करिए या इमीडा क्लोप्रिड
1: जी जी,
2: इमीडा क्लोप्रिड का इस्तेमाल करिए। 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के मान से लगता है ये, इसका आप स्प्रे करिए। और चूंकि ये गर्मी का मौसम है तो ध्यान ये रखें कि या तो सुबह के शाम स्प्रे किया जाए या शाम के टाइम स्प्रे किया जाए, दोपहर में जहां तक बने दोपहर में स्प्रे अपन को छिड़काव या भुरकाव नहीं करना है।
1: जी सर, जी सर धन्यवाद, ओके सर
0: जी। डॉक्टर साहब ग्रीष्म ऋतु की फसल से संबंधित कोई सलाह या जानकारी जो हमसे छूट गई हो और किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी हो?
2: हमारे किसान भाई सतत निगरानी करते रहें खेतों की, और सबसे पहले अगर कोई छिड़काव करना है तो नीम तेल का जो है छिड़काव हमारे किसान भाई करें।
0: जी जी, तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि नीम तेल का छिड़काव वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारे साथ डॉक्टर के नेमा जी हैं जिनको, जिन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मिल गए हैं। तो किसान साथियों याद रखिए, सही जानकारी और समय पर किए गए कृषि कार्य ही फसल को मजबूत बनाते हैं और हमें अच्छी पैदावार दिलाते हैं, इसलिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपके खेत और फसलों दोनों के लिए बेहद काम आई होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ सवाल जवाब का नहीं है, किसानों की अपनी ग्राम सभा है जहां हर सवाल और हर आवाज अपने आप में मायने रखती है। सर जाते जाते एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो भी महत्वपूर्ण कीट और रोग, क्योंकि अक्सर हमारे कॉलर पूछ रहे हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए क्या एक छोटा सा कोई आप टिप्स देना चाहें, कोई सलाह देना चाहें?
2: इससे देखिए बचाव करने का तो ये है कि स्वस्थ बीज का अगर और स्वस्थ खेती अगर करते हैं हमारे किसान भाई तो उनको कीट और रोग जो है वो मतलब परेशान नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु की हर 3 साल में जुताई करना है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का। और दूसरा ये है कि शुरुआती अवस्था में जैविक कीटनाशक जो हमारे किसान भाई तैयार करते हैं उनका प्रयोग किया जाए, NPB का प्रयोग करें, BT का प्रयोग करें, बेसिलस थुरिंजियंसिस का, ये जैविक कंट्रोल इनसे होता है, रासायनिक पे पहले नहीं जाना है।
0: जी जी, तो किसान साथियों आपको जैविक तरीकों को अपनाना है, डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है। तो धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें फोन किया या करने की कोशिश कर रहे थे।

0: नमस्कार डॉक्टर के नेमा जी, आपका भी आप यहाँ आए और इतना अमूल्य समय हमें दिया, किसानों को आपने इतना अपना समय दिया और इतने उनके सभी सवालों के जवाब आपने दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान भाइयों का, आप सब लोगों का भी नमस्कार और धन्यवाद।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसमें हमने विषय रखा था ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर के नेमा जी। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा जी ने, कर्तव्यस्थ अधिकारी थी बबीता भंडारी, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया था राजू वासे और रेणु टोपो ने। उद्घोष के रूप में हमारे साथ थे विजयकांत नायक जी, और सूत्रधार के रूप में आपके साथ थी मैं यानी राधा चौरे। आप दे आ गया, नमस्कार, राम राम।

श्रोताओं, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। एफएम एंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8 बजे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है, वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गांव में।
3: अच्छा हो गया नहीं तो?
4: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेज करिए सरकार ने।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना, बढ़िया हो गया,
3: नल लगी गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह।
7: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा। और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहेज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
0: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहाँ जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
8: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गांव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन

0: की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलेरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है, तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के सपने को मिलकर साकार करें।
1: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
2: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है, तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
3: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था, उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपए आ गए हैं, वार्ड क्रमांक 2 में 790 रुपए आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपए आ गए हैं।
4: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है, जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं, उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी को वेस्टेज नहीं जाने दे, इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
5: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

0: कल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं। अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जला तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता तो माने टाइम बहुत व्यस्त हो जाता। पहले और अब पानी हो गया तो नल चालू करो, पानी भरो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। एफएम एंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पॉप म्यूजिक।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज की कलाकार थी फाल्गुन पाठक। एफएमएन पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और

0: मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन

लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन

0: ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए, हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको री टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा।
0: हम अभी हाजिर हुए

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चनें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

छाया गीत में आज नक्श लाहिलपुरी के नगमे थे फिल्मों के नाम, फिल्म तुम्हारे लिए।

0: और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता
1: माना तेरी नजर में।
0: आज का चाय गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार। ढलती जाए रात।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। इसमें अब हम शामिल करने जा रहे हैं आज़ाद देश के गुलाम, इस फिल्म का गीत।

आज़ाद देश के गुलाम इस फिल्म के लिए ये आवाज़ें थी मोहम्मद अज़ीज़ और आशा भोसले की। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत, जिसमें अब हम आपको सुना रहे हैं इलाका फिल्म का गाना।

0: फिर एक बार मोहम्मद अजीज और आशा भोसले का गाया फिल्म इलाका का गीत।
1: प्यार से भी ज्यादा तुझे

शुदा सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवाएं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया फिल्म वो सात दिन का ये गीत।

0: opened up new possibilities.
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
0: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in

0: वो सात दिन फिल्म के इस गाने के साथ ही श्रोताओं अब सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। रात्रि के 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगी समाचार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।